यज्ञये वचा द्वापरे दानमासितम् कलियुगे कलौ भक्तिर्गरीयसी तव पूर्वम्